रचया करे गुरु कलगी धर जगदीश। सो हमरी रचया करे गुरु कलगी धर जगदीश। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकर जिने सब कल धारिया तद बचन कर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक ता सरन तुम्हारिया मोहन तद सतसंग त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ न आवे तद जपे निधाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्याव हे मन बचन कर्म जे तुद अराद है से सबे फल पावे मलमूत मूड जे मुगद होते से देख दर्श सुगयाना बिनवंत नानक राज नह चला पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कटंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनों तन कहया तैन जम नेड़ न आया बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे सतगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी मोहल्ला पांचवा सलोक पतत असंख पनीत कर पुने पुने बलहार नानक राम नाम जप पावको तिन किल बिखदा हनहार शांत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री दर चरण कमल अराधिय जम पंथ बिखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधिय कल मले दहता सोध करता दिन सरैन अरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दमोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंधकूप ते उदार है नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जाना गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेसर सर्ब कला जिन धारी करना में समर्थ स्वामी घट घट प्राण अधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो सरण जोग समर्थ मोहन सर्ब दोख बिदारो रोग सोख सब दोख बिनस जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल धारी गुण गाओ मना अचौत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्ब कर प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किस है काल कंटक लोभ मोह नास है जी जाके प्रभ बस है सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कहला बिनवंत नानक ऐछ पुन्नी जापत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पांजवा सुन सखिए मिले उदम करे हा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई ए रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करे ते सजंत सुन सखिए ए भली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुपाए अपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है कल कलेस मिटे भ्रम नस मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेसर नानक नाम त्याई है सखी ऐश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुख दाता से वडभागी माए सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया
ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮਿਰ ਨੀਂਦ ਪਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਮ ਖੋਇਓ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਵਾਮੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਆ ਕੋਲ ਖਿਲਿਆ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ

होत जात सब धूर पवड़े धद्दा धूर पनीत तेरे जनवा धन ते उजे रोचया मनवा धन नहीं बछ स्वर्ग न अछ अत प्रीत साध रज रच धंधे कहा ब्या पे ताहू जो एक छाड़ अन कते न जाहू जाके हिये दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेखर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जगत सातर कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत कछ जोग ना हो ज्ञानी रहते आ गया दृढ़ जाके उसन सिर समसर सब ताके ज्ञानी तद गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवने आए श्रेष्ठ मैं बिन बूझे पास ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके भाग मथोर पौड़ी जा जुग मैं एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मैं उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रव रहते और ज परे जो छोड़ छिडाना देवन हर मने बिसराना धारो कृपा जिसे गुसाई एत्यत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुकम बिनास हुकम आग्या भैन ना कोय आमन जाना तै मिटै नानक जह मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो अपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताकै निकट न माए सलोक किरत कमावन सब असुभ कीने तिन प्रभ आप पस आपन हो कर नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एके आप करा बनहारा आपे पाप पुन विस्थारा या जुग में जित जित या जुग जित जित आपे लायो सो पायो जो आप दवायो वा कांत न जाने को जो जो करे सो फन हो एके ते सगला बिस्थारा नानक आप सवारन हारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसुम रंग बिख सोर नानक ते सरणी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जहर चो तह ते बंधन पाहे जह बदकतू न छूटिए सागत उकमाहे हो करते कर्म रत

नानक वे परवाह पौड़ी लल्ला ता कह लवे न को एक आप अवर न हो होन हवन हार होत सादे आया वो आकांत न काहू पाया कीट हाथ में पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तै जपना सलोक आत्म रस जह जानिया हर रंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिये जास रसन हर हर जस भनिये आए बसे साधु कह संगे आंदर नावत नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया बिधाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर कह दर्श समाया सलोक जास जावत मन होए आनंद बिन से दूजा पावो दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समाओ पौड़ी जैया यारो दुरमत दो तिसे त्याग सुख से जेसो जैया जाए परो संत सरना जय आसरिया भाव जल तरना जैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो जैया जन्म न हारिया गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ईति उत के मीत गुरपुरे उपदेसिया नानक जपिए नीत पौड़ी अन दिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिख्या दिन चार छाड़ चलियो सब कोय काको मिता काको मात पिता सुत धीया ग्रह बनता कछ संग ना लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही पत सेती अपने कर जाही साध संकल कीर्तन गाया नानक ते बोहर न आया श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खड़ सातर हो गया ता पूर कुंभ करेज कर माता ज्ञान ध्यान तीर इस नाने सोम पारक परस अध्याने राम नाम संग मन नहीं हेता जो कछ कीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जय मन बसे गोपाला श्लोक कौंट चार दै दिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जौन नानक लिखियो लेख पावड़ी कका कारण करता सो लिखियो लेख न मिटत को नहीं होत कछ दो बारा करने हर न भूल नहारा काहू पंथ दिखा रहे आपै काहू उद्यान भरमत पछतापै आपन खेल आप ही कीनो जो जो दिनो सो नानक लीनो श्लोक खात खर्चत बिल छत रहै टूट न जाए पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तै जाहे खर्च खजाना नाम धन या भगतन की रास खिमा गरीबी अंध सहज जबत रह गुण तास खेले बिगसे नंद स्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सहावने राम नाम।

आस अनेत गौरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जप नीत कहा बिसासा देह का बिलम न करो मीत नह बारक नह जोबने नह बिरदी कछ बंद ओ बेरा नह बूजिए जो आए परे जम फंद ज्ञानी त्याने चतर पेख रहन नहीं हेठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहा लपटाए गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू महतक भाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग सलोक कोखे सातर बीद सब आन न कहतो कोई आद जगा दी होन होवत नानक एक सोए पौड़ी घग्गा कालो मने एह बिन हर दूसर नाहे नह होवा नह होवना जत कत उही समाहे कूले तो मन जो आवे सरना नाम तत कल में पुने चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत पिया नानक हर गुर जाको दिया सलोक गण काले सब दिवस सास नह बढ़न घटन तिल सार जीवन लोरे भरम मोह नानक तेउ गवार पौड़ी गंगा ग्रासे काल तै जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन में मर है आत्म राम ना चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जय आप दिवाए गणती गणी नहीं कोई छूट है काची गागर सर पर फूट है सो जीवत जय जीवत जपया परगट पै नानक न छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊंद कमल बिकसांत परगट पै आपे गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गौर लागा धन तन ओआ दिन संजोग सुभागा चार कुंट देह दिस भरम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जय नेत्रा श्लोक छाती शीतल मन सुखी शांत गोबिंद गुण गाय ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी छछा छोरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे छछा छार होत तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता छाड़ स्यान बहु चतराई संतन की मन टेक टिकाई छार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई श्लोक जोर जलम फूले कनो काची दे बेकार अंबद बंधन परे नानक नाम छटार पौड़ी जजा जाने हो कछ हुआ बाद जो नलनी भ्रम सुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकर तिल नहीं मानी।

प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल।

कक ने रे सगला श्रेष्ठ को राजा दुखियार का नाम जब तो है सुखिया लाकरो री बंधन पर अर का नाम जब ते निस्तरे अन कुमार अंग तिख ना बुझावे अर का नाम जब ते अगावे जय मार गयो जाते अकेला ते हर नाम संगोत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जबत तय पार पुराही अनक बिघन जय आए सिंगार हर का

नामे अमोल अष्टपदी जाप तप ज्ञान सब ध्यान खड़सा तुर सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्यागम मध्य फिरिया।

जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाई।

दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जबन

प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता विद नाना किसन जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कब बाच दोहरा

तपा जिस कृपा करे सो पूरा प्रधान जिसनु बल धरे जिसे जराए आप सोई अजर जरे तिस ही मिलिया सच मंत्र गुर मन धरै जिसे जराए आप सोई अजर जरै तिस ही

इतनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन कर दिया प्रभु जी, माफी बख्शे। कुलदीप सिंह जी दमनी टकसाल वाले आप जी नूं पत्रवाणी कथा राही जोड़नगे, उन्हां पासों प्यार से सरण करो जी। संगतां परिवारां वल्लों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी पुरब के संबंध में श्री अखंड पाठ साहब 6 प्रारंभ हैं, ऐतवार सवेरे 10 बजे संपूर्णता होणगियां। दीवान इस संबंध जनगे ऐतवार दे आप जी ने हाजरियां भरनियां, उन कथा राही जुड़ना करो जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

है, बड़ा गहरा शब्द है। विचार अगे जाके कर दे थोड़ा जा, संगत बेनती थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, साथ संगत सगने होके बैठा करो।

तू जीवन दी जुगत सीखनी है ना, हे इंसान जे तेनू जीवन दा ढंग अजे नहीं आउंदा ते तू जीवन दा ढंग कुत्ते कोलों सीख। आदोगी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी क्यों

परमात्मा तेरे द्वार दे उत्ते एक बड़ी कीमती चीज मिलती पर मिलती नीवे होके अपने आप नूं कुकर जाने नीवे तो नीवा जाने ते रब फिर झोली च खैर पा दे क्योंकि खैर दे रूप च सारी चीज मिलती सियाणप दे नाल नहीं मिलती। असीं इत्थे कुछ ना कुछ लैण वास्ते ही आउंदे आ गुरु दे कोलों सब तो कीमती चीज जड़ी है वो है सहज तेरे द्वारे धुन सहज वो सहज नाम रूप के विच मिल जाए अवस्था रूप के विच मिल जाए चौथे पद विच मिल जाए ये गुरु किसी ना किसी ढंग के नाल बख्शिश कर देता है अगर सेवक पात्र बन जाए। मंगते हो किसी मंगले ने कि शेख फरीदे खैर दीजै बंदगी अपनी बंदगी दे अपना सहज दे परमात्मा क्योंकि तेरे द्वार तो ही ये चीज मिल सकती है और मार्केट दे विच्चों किसी होर जगह तो अगर आदमी चाहे कि मैनू सहज मिल जाए मुश्किल है। सहज केवल ते केवल गुरु दे कोलों मिल सकता है ये आनंद केवल ते केवल गुरु दे सकता है।

घंटा जाका सुनिए चौकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ, जाका चवर सब ऊपर चुलह, ताका धूप सदा पर फुले, घट घट संपट है रे जाका, अपंग सभा संग है सदा, आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंता, जिसे प्राप्त तैसी लहना, संत चरण ओ आयो सरना, हाथ चढ़ियो हर साल ग्राम, को नानक गुर की नो दान, आसा मोहला पांजवा पांच पदा, जय पैडे लूटी पन हारी, सो मार्ग संतन दूरारी, सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बीथी, जमका मार्ग दूर रहया रहाओ, जय लालच जगाती घाट, दूर रहियो जन ते बाट, जय आपते बहुत कन साथ, पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को

साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुज गए त्रिसना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परिया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ।

श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माह मटावो सिमरो जासप संभरे कै नाम जपते आगंत ने कै वेद प्राण सिमर सोदा अखियर किन्ने राम नाम इक अखियर

संग तेरा चले जाय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अनक पुन्ना है चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हर है गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सब सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तो सुखिया।

खंड पृथ्वी फिर चल जीवे मां दास पीसर थीवे अगन माहे होम प्राण कन का सब है भरपूम दान न्योली कर्म करे भवासन जैन मार्ग संजम है साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हो में मैल न जावे हर के नाम संसर कृष्णा है नानक गुरमुख नाम जब तगत पाए मन कामना तीर्थ दे छुटे

जे प्रसाद धार उपर सुख वसै सतप्रात मीत बनता संघ हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुदाई पवन पावक मुला जे प्रसाद भोगे सबरसा सुर समग्री संघ साध वसा

जतन करे तो भी सुरपंग। कह पिंगल पर्वत पर भव नहीं होत वा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे।

तुमरे सूत्र धारी तुम ते सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी। शलोक देन हार पर छोड़ के लागे आन सुहाए नानक नसी जई बिन नावे पत जाए अशपरी। दस मस्तु ले पाछे पावे

मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असवस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अवमान मिथ्या आप सुपुर कर्त गुमान आस्थिर भग साध के शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्व रन पर निंदा सुनह मिथ्या पर दर को मिथ्या नेत्र पीक्त पर तिरया रूपाद

जय प्रसाद से सुय जय मनाड पैर ताका जस का विजय जय प्रसाद सबको माने मुक्ता को जस रस मखाने जय प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पत्से तीकर जावे जय प्रसाद रो कंचन देहि लिवलाओ तिस राम स्नेहि जय प्रसाद तिरावला रहत मन सु पावे हर हर जिस कहत जय प्रसाद तेरे सर्व सिद्ध ढाके मन सरणी पर ठाकर पर ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन साह साह सिमरो प्रभु ऊंचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ देह

आशपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को सोग, ब्रह्म ज्ञानी कह दिष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यो बसुदा को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानन ज्यो पावक का सह सुहाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लगे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मनो ए प्रगा जैसे तारे ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाहे अभिमान।

ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सादेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाए दाख्यर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का टाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज्जीवे नहीं मरता।

दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म ही तावे जीवन मुख सो कावे।

दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन। संत के दुखन संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के अति को रखे न कोए, संत के दुखन थान पृष्ठ होए, संत कृपाल कृपा जे करे नान, संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे।

जनता जिस मन माए इसते फिर था कोई ना है रे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रव्यापे आप अपन किया कछ ना होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस बिन ना

सोजन सस माता श्लोक रूप ना रेख ना रंग किस तरह गुनते प्रभिन्नते बुझाए नानका जिसोवे सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभन में राख मानु की तू प्रीत्याग तिस्ते पर नाई किस को सर्व।

जन का सेवक सो बड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सचयुग आदि सच है वै सच नानक होसी पै सच आष्टपदी चन सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत हवन हार राव सत सत सतधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मानिया कर्ण करावन तिन मूल पछाणिया जा केर दे विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रटाया पैते निरपो ए वसाना जिस देव जा तिस माए समाना बस्त माए ले बस कढाई ता को भिन्न न कहना जाए बूझे बूझण हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेव जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे नंकारा सो सेव दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाए अपने सेवक को नाम जपाए अपने सेवक की आप पद राखे ताकि गदमत को इन लागे प्रके सेवक को नाम पहुंचे प्रके सेव ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया निके की री में कल रखे भस्म करे लश्कर कूड़ लाखे जिसका सास न काटते आप तक रख दे करात मानस जतन करत बात दिसके करता मृथे जात मारे ना रखे अवन कोहे सब जी का रखा सोहे काहे सोच करे रे प्राणी जब नानु प्रबल अलख बढ़ाणी बार बार बार जपी है

सेवा करत हुए निकामी तिसको उत्प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुरु की मतले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जी हृदय हर नाव अनक बार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ बहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आपने किस भरम सह सियाण पले न जाइए नानक ऐसा गुरु अड़भागी पाइये सफल दर्शन पेगत बनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेड़ संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की धर कह गवे सुनकर भजन करने गाने मन संतोख आत्म पतिया ने पूरा गुरु आख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे के संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान जिस पावे तिज लय मिलाए जे पाए कुस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक आओ बोल न पोचित प्राणी गम गोचर पर निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनक भगत बंधन नित करे जन कमल हृदय समरे सत बलिहारी सतगुरु अपने नारंज प्रसाद ऐसा प्राप्त जपने वरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोए इस प्रकार ना ही कदे विनाश जा कै मन पर टे गुणता साठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेव को दे

सुत मीत कुटाम्बरपणता इनते कहो हो तम कम सुनाता राजरंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार आशास्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बसारी जंदी ए बुझे नाम गाना नाम सा नान पछताना गुरकी मातू ले आने भगत मिना वो डूबे सहने अर की भगत करो मनमीत

ठाकुर कम पारी अपना जी सुख अपने आसन तय जन्म को काम नासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब चौंकी त्रास को सोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त के पूछ लेखा जब नाथ निर्जन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप आपिए चर्चा नानक अपन रूप आपियो पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैर कहो कहत होता जय निर्जन।

जब अपने आप आप उधारे तो सगन सगन काम विचारे जय आपन अपना आप निराता कौन ठाकुर कौन कहिया चेहरा विस्मर विस्मर विस्मार नानक अपनी गत जानो आप।

जय बजरे बजार संत प्रताप दो पाका पित नी उनकी शोभा उनु बनी आपे कौतक करे नंचो जापे अस्पो किन्नर जो जिस पावे तिस आप नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे।

का मीठा सलसमी ग्रीय कटमाए अनक्रम नाना निष्ठाए नौ अमृत प्रभु का नाम दे महेश का विश्राम सुन समाध अन तैनात कह न जाए चर्च समाध तिन देखे अज जावत गाए नानक ते जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद कट कट ब्याप रहा भगवंत

कहनिस दार। सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा रंग, जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन आनंद करे बलगा जय प्रे गोपाल महान कै मत है नानक गुदरे तिन कै साथे।

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पात साही दसवीं छपै छंद तवै प्रसाद। चक्र तिन्ह अर बरन जात अर पात नहन देह रूप रंगर रेख भेख को कह ना सकत कह। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कही।

सेवा करिए तो माँ बाप का कर्ज उतर जाता। गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं, गुरु जी का बड़ा प्यारा बचन है, जा को मुश्किल अत बने ढोई कोए न दे, लागू होए दुश्मन साक पे भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्मता लगे न तत्ती वाओ। बाणी पढ़ते हैं लगा मात्रा का ख्याल करके पढ़ांगे, आनंद आएगा। चित आवे उस, इत्थे ऊड़े का मूँह खुला आएगा, उस बोलांगे, जे औंकड़ आएगा थले उस। ये गुरबाणी पढ़ते हैं ख्याल करना दसा संगीओ, किहड़ी मात्रा लगी है ते उहदा उचारण की है। तां ही जदों गुरबाणी सिखदे हैं पहला मोह हारनी पढ़नी अत्यंत लाजमी है, तां सानू अखरां दी सही जिहड़ी है आवाज़ ये सानू मिल सकती है। तो गुरु अर्जन देव जी कहिंदे जिस व्यक्ति नूं बहुत मुश्किल बन जाए, कोई भी ढोई ना देवे उहनूं, जिहड़े दुश्मन ने वह प्यारे चार सिर घेर लैन, रिश्तेदार भैण भरा सारे भज जाण, कोई साथ ना देवे, ऐसे समय जेकर वाहिगुरू परमात्मा याद आ जाए, चित आवे उस पार ब्रह्मता लगे ना तत्ती वाओ। तत्ती वाह नहीं लगती सत्संगी, जे कितने ऐसे समय परमात्मा याद आ जाए। तो गुरु जी मेहर करते ने ऐसी कृपा होंगी वाहिगुरू की, जिन्हों परमात्मा गुरु नाम की दात दे देवे, जन्मा जन्मांतर के पाप लै जाते ने, आसरा मिल जाता, और जन्मा जन्मांतरां दे जिहड़े करज चढ़े ने सिर दे उत्ते इह वी लै जांदे ने। मेरे मन भज राम नाम साबे अर्था, श्री गुरु रामदास साहिब जी फरमाउंदे ने मेरे मन, हुण मन तां प्यारे गुरु दा कल्या गुरु दा मन नहीं गा, सारयां दे कोल मन ने, उत्तम भगता मध्यम भगता ते कनिष्ठ भगता तीन हुंदे ने। उत्तम भगता वह हुंदा जिहड़ा अपने मन नूं संबोधन करके ते दूजे नूं सिख्या देवे, प्रथमे मन प्रबोधे अपना पाछे अवर रिजावे। ते मध्यम जिहड़ा भगतां दा सत्संगी, उह किसे नूं सिख्या दे के ते फिर उपदेश देवे। कनिष्ठ भाव सब तों नीवें दर्जे दा हुंदा है भगता, जिहड़ा किसे नूं दबके नाल डरा के उपदेश देवे, भगतां दा है जिहड़ा उपदेश देण वाला। ते गुरु साहिब जी उत्तम भगतियां नूं उत्तम बनाउण वाले ने, इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह मन नूं संबोधन करदे ने कि जिन्हें भी पाए शब्द पढ़ना गाउणा वह अपने मन नूं संबोधन करे। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, ऐ मेरिया मना भज भजन करिया कर, राम नाम रमे हुए परमेश्वर के नाम का सब अर्था, सब भबे सारी लगी, जिहदा अर्थ बनेगा सारे ही अर्था मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हर हर पुछया ढाडी सदकै कित अर्थ तू आया, अर्थ का मतलब हुंदा सत्संगियो मनोरथ, इसलिए सब अर्थ आ सारे ही मन के मनोरथ पूरे हो जाएंगे जदों भाई तू परमात्मा का भजन करेगा। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नावै जीवन बिरथा। सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने कि पूरियां गुरां ने साढ़े अंदर नाम दृढ़ करवाता, दृढ़ दा अर्थ नड़ भुले ही ना, उठदियां बैठदियां तुरदियां फिरदियां सुतियां खांदियां पींदियां रब वाहिगुरू परमेश्वर याद रवे, उन्हूं कहिंदे दृढ़ हो गया जो अंदरों कदे रब दा वाहिगुरू दा परमेश्वर दा नाम भुले ही ना। ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, साढ़े पूरे गुरदेव श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने साढ़े अंदर दृढ़ करता नाम पक्या तरह विछा दिता। बिन नावै जीवन बिरथा, भाई नाम तो बिना सारा जीवन व्यर्थ ही है। रोज ही पढ़ते हैं जपजी साहब का पाठ करना चाहिए प्यारियो, हरेक गुरु साहब जी सच्चे पातशाह अमृत वेले श्री जपजी साहब का पाठ करते।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੱਜ ਕੇ

पन आठ पैर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल न व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक ते आया निर्मल।

दयाल पुरख कृपा कर है हिक सेवी हिक संभला हर एक सपय अरदास नाम वखर तन सांचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो

बेपरवाह सदा रंग हर कै जा को पाख स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकर तेरो अवर न काहू ताने ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने निरपो होए रहे लेव एक नानक हर मन माने टोडी मोहल्ला पांजवा हर बिसरत सदा खवारी ताको तोखा कहा ब्याप जाको ओट तोहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन्य उस जन्मा नानक तिस बलहारी टोडी मोहल्ला पांजवा घर दूजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस धायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत न एह मन लायो बिग स्यो पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जो हन जायो चरण कमल स्यो भाओ ना कीनो नै सतपुरख मनायो तावत को तावे बो पाती जो तेली बल्द भरमायो नाम दान स्नान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नै बूझियो अपनायो पर उपकार ना कबहू किए नि सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोहट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हार भगत वछल सुन आयो नानक भाग परियो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी मोहल्ला पांजवा मानख बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिंगार बो करता जो मृतक ओढाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुण संतन सेवा कित ही काज न आया कर अभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने भरते पीख पीख दुख पाया सारो दिन समजूरी करता तो मूसले शराया खेद पयो बेगारी न्याई घर के काम न आया पयो अनग्रो जाको प्रभ को तिस हिरदे नाम वसाया साध संगत कै पाछे परियो जन नानक हर रस पाया टोडी मोहल्ला पांजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा।

अवर कछु मेरे संग ना चल, मिले कृपा गुण गाम रहाओ, राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम, ताए ताए बो बेद को तावे।

राम नाम निर्मल है रीत रहाओ, प्राण आधार जीवन तन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद पे मन निर्मला, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जगाद भगत।

प्रीतम अंतर जामे सुगुण सुजान कोट राज नाम तन मेरा अमृत दृढ़ धारो प्रभ मान आठ पैर रसना गुण गावे जस पूर अगावे।

मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै, कोट आनंद राज सुख भोगवै, हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल बिख नास, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पई आसा, दर्शन पेट ते उतरी भुख। चार पदार्थ अठ महासिद्ध, काम तीन पार जाते हर हर रुख, नानक सरन गही सुख सागर, जन्म मरन फिर गर्भ न तुख। टोडी मोहल्ला पांजवा, हर हर चरण हृदय और तार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहो। पुन दान पूजा परमेसर, हर कीर्त तत विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया,

होवै पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाती तिस तिस के

चौथा हर हर नाम पच प्रखोत्तम सब दिन से दल दलगा पौ जन मरना मेट्यो गुरु शब्दी हर आस्त्र सेव सुख समगा

रंग रसमान है बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय से डंड लगाना फिर पछताने हथ पलगा राख राग जन किरमत मारे शरणागत पुरपत पलगा दर्शन संत द्यो सुख पावै प्रभु लोज पूर जन तुम गा तुम समरथ पुरख बड़े प्रभु स्वामी मोको दी जय दान हर निमगा जन नानक नाम ले सुख पावै हर नाम मिटो सदकुमगा सुई महला चौथा

देही मन भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुतंद पटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तू सबना से लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे ते आख होवै, बे नजरी ना ही को भेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिल है, जै नानक सो थाए पाए। सुई महला चौथा, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पै जिनहा नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग पै, गुरवचने जिना जपया मेरा हर हर, तिनके होमे रोग गए राव। ब्रह्मा बिसन महादेव त्रै गुण रोगी, बिच होमे कार कमाई, जिनकी है तिसन चेते बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई। होमे रोग सब जगत व्यापिया, तिन को जन मरण दुख भारी, गुरप्रसादी को ला छुटाए, तो जन को होम बलिहारी। जिन श्रिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप पारो, नानक आपे बेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। सोई महला चौथा, कीता करना सर्वर जाए, किस की

नाही जे किछ कर हम सकै ज्यो पावै तिवें बख्श रहाउ सब जियो पिण दिया तुझे आपे कारे लाया जे आ तू हुकम करे ते को कर्म कमावै जे आ तुद तुर लिख पाया पंच तत् का तुद से सब साजी को सेवा करो जे किछ कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मन मुख रे सै रोवै

अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट सहत्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सकल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव महा उदास तपीसर थीव अगन माहे होमत प्राण कनक असव हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमकर शरीर कटावे तो पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमाना मन ते हुटे सोच कर दिन सियर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देही को बो साधना कर मन ते कबू न बिखिया टरे जल धोवे बो दे अनीत सुध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बो मूच बहुत सियाणप जमका पो ब्याप अनक जतन कर त्रिसन्ना त्राप भेख अनेक अग्ने बुझे कोट अपाव दरगह नहीं सिजे छूटस नाही उब पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तैल नहीं मान हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांग साजना की सेवा लाग जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग होमे छोरे जे को जन्म मरण ते डर साजना की सरणी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सुगनिये साबते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समद्र टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरो नाओ नथावे को नाओ तेरा थाओ नमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गात मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी ओत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया में उत्तम किरिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जह घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण

तैसी बेख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जोगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मोकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखे तैसा तैन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावे सोई पुन होग पसरे आप होए अनंत रंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा।

नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है अमर पै सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुग सहज समाव है। अपने जन को सास सास मारे नानक होए परमेश्वर।

नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बेटा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरे बजोन परमावै तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकीहा मुक्त आगे सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावे तृण समान का संग न जावे बोलस्कर मान कूपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस करे खुवारी।

कै दुखन आरजा घटै, संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मै पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोई, नानक संत के दुखन थान प्राइट होए, संत कृपाल कृपा जे कर, नानक संत संग निंदक पीतर, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्राइट होए, संत कृपाल कृपा जे कर, नानक संत संग निंदक पीतर, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन काक जीव लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को चले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाए, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख, संत का दुख सदा अपवैत, संत का दुखी किसे कार नहीं मैत, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महाहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना हिंठाओ, नानक संत पावे ता लय मलाई, संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार, संत का दुखी बैल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं रहा।

परसन अष्टपदे अबनासी ब्रह्मन में राख मन की तुम प्रीत त्याग तस्ते पर नहीं किश कोय सर्ब निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बकसंद साल तेरे के चरणे पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन पन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद्रू मंगल साध जाक सर्ब थोग सुनिए करता कै राज में राज जोग मैं जोगे ताप में तपेसर ग्रहत में भोगी त्याहे त्याहे भगते सुख पाया नानक तिस पुर काके ने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोही अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तह गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जना

तैसकै संग सख उदर नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सखी करे प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल सेकी गुर दुरमत मल हिर गुर बचनी हर नाम उचर सतगुर सह के बंधन काट गुर का सिख बेकार ते हट सतगुर सह को नाम तन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुर सह का हालत पालत सवार नानक सतगुर सिख नानक सतगुर सह को जी नाल समार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे।

तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिस्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जसरे दे हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सरबन दान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह सियान भलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ पागे पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चन गत निर्मल रीत पीड़ित संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गै गवे सुनकर बचन करन अगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमर दृढ़ पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तस लय मिलाए जिहबा एक औसत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हिरदे सिमर सत बलहारी सत गुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होय उस पुरखा नाही कदे बिनास जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेव को दे मोह माया के संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक भरम मोह दुख तय ते नासे तपत माहे ठाड वरताई आनंद पिया दुख नाठे पाई जन मन के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चुका निर्भो होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाए चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पै परगा साध कै संग रच रचना अपनी कल थारी अनक बार नानक बलहारी सलो।

लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै।

सिमरत सातर बेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै

दूर कतहु न जाई, राव रहया सर्वतर मैं मन सदा तिहाई। जह जह पेखो तह हजूरा, दूर कतहु न जाई, राव रहया।

बिन सजाए जो निमक मह सो अलाप सुख भनिय रहाओ प्रत पाले अप्याओ दे कछ ऊन ना होए सास सा।

सुगंध रसा होमे बिखतिया गन राम इत उत नह डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम बिलावल महला हर खोजो बड़पागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सत गाइए पार ब्रह्म के रंगे राम सो प्रभ सद ही सेविये पाइये फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जप आनत तरंगे राम एक तिल

ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चलह सतगुर पाए जिनके हृदय हर वसै हो मैं रोग गवाए गुण रवे गुण संग्रह है ज्योति ज्योत मिलाए इस जुग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चित लाए नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सतगुर की।

सिख सुन पाए ए गुणी निधान, सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाय अभिमान। नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निधान पौड़ी, जितने पातशाह सहराजे खान उमराव सिखदार है। तितने सब हर के किए, जो किछ हर करावे सो

नहीं ईसल बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए ओए पनीत भगवंत भजन ते।

सो प्रव मैं मन माहे त्याय कट अव कट जद कत है सहाय रहाओ रंग कराओ जाके एक समान कीट हस्त सगल पुराण बियो पूछ न मसलत तरे जो किछ करे सो आप है करे जाका अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप अकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार।

ताका संग जाके मन लगा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजे सुन सुनी अनद करै प्रभ गाजे। प्रगटे गोपाल मात कै माथी नानक उदरै तिन कै साथी। शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सवरेन अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेव की सेव। आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रचीत। सुखमणि सहज गोविंद गुणनाम जिस मन वसै सोत निधान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान।

जाको हर रंग लागो ऐस जोग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सत गुर पूरा।